0: दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंक की भेड़ काटस को मिट्टी में मिला।
1: हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

जय जगन्नाथ, जय माँ काली। माननीय केन्द्र गृहमंत्री श्रीयुक्त अमित शाहजी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त समीक भट्टाचार्य, मान्यवर केन्द्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेन्द्र यादव जी, मान्यवर केन्द्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केन्द्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलभिया जी, नवनियुक्त विधायक दल की नेता मान्यवर श्री शुभेंदु अधिकारी जी और विधानसभा के भी विरोधी दल की नेता श्री दिलीप घोष जी, श्रीमती अग्निमित्रा पल जी, श्री मंगल पांडे जी, श्रीमती रूपा गांगुली जी और यहाँ उपस्थित सभी विधायक महोदय महोदयागण, आज के नवनिर्वाचित विधायक दल नेता श्रीयुक्त शुभेंदु अधिकारी जी, उसको मेरी तरफ से उड़ीसा तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल की लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। आज की ये दिन संभव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सभी नेता कार्यकर्ताओं और जितनी भी धन्यवाद दिया जाए यो कम ही होगा। 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस बड़ी विजय के लिए मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को कटि कटि प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु जी के आशीर्वाद से ये असंभव संभव हुआ है और माँ काली की भी जो आशीर्वाद है उसी पर ही वो संभव हुआ है। ओडिशा और बंगाल में ज़्यादा कोई अंतर भी नहीं है। हमारा लोग कलकत्ता को अपना दूसरा घर मानते हैं। हम दोनों राज्यों के लोग महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को सिर्फ भक्ति नहीं करते हैं, दिल से प्यार करते हैं।

0: and the Patna police challenged recruitment examination, demanding for the release of examination notification by Bihar Public Service Commission. Pentagon approves a $25 billion defense spending bill that opposition lawmakers say will be used for U.S. weapons. The bill falls well short of the government's proposed budget of nearly about $40 billion. The Italian Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani, welcomes the American Secretary of State, Marco Rubio, in Rome. Rubio is also scheduled to... The Union Home Minister Amit Shah said to be addressing the press. Let's listen in.
1: टूटा के उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करकर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए. हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर निश सुनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को करें. मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है. चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शीर. जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल. 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के की दृष्टि से और शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है. और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें. बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त करकर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की